0: मी आर गार्डिंग फाती फास्कड थिरीज मी दिव्य राज्य गेडो
1: अर्गुण मेंगे प्रवाम तक हम जिफा वागतुं तेंगे नस्तेनी कीरित कुरान के दिव्य तर्जमा कीरित कुरान के दिव्य तर्जमा मी दुगे नस्तेनी सूरत थौबा सते का नवारवन आयतुं फशायगें इसूरे निम्मा सूरत यूनुस फशायगें इसूरतुगे एकाविस्वन आयतुगे नियदा तर्जमा विदाल दिवाफावनी डॉक्टर मोहम्मद हनीफ
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: رحمن وانت رحيم وانت الله گے اسم فلم فشاگن میں

0: Mamma, badu haveje.
1: Tarifla, Sonia gaatu buni. Mamma ibeje mege muluwa.
0: Papa, gaadi jehaniye.
2: Tarifla madu kobbada.
3: Sonia, debel maasha school alla.
4: Tumhi ne to kaha tha. कि सच्चा प्यार सबसे बड़ा होता
0: है मामा
4: किस वजह से
1: मामा फोन एक का हां मादमारे तैयार दावी तना कड़ी वाइपर कराना
0: मामा वैसे फोन का डोंटा
5: कोको डोंटे कमी कड़ी गाले नूले वेने दे सोनिया गाता
6: एहनी गुलुंता बदहे कुराफा दान एम गातु गावा गुलुंतका एम फुरतम इस्कंदे मा

0: फिना दत्त बदल कोली कौन कुछ कहता
1: लूना
0: लूना क्या कुछ कहा बाहक दिखी तो ऐ मैं लूना है कि कौन कहा खंतत के कुरा कुछ
2: दिवे
1: दिवे
3: दिवे दिवे
1: ही कुरा कुछ
4: कदका कुछ
0: दिवे ही बहुम बाहक दका कुछ ऐ मैं लूना है कि दिवे ही बहा
1: लोभी
0: कुरा कुछ ऐ मी मा दिवे ही बहा लोभी कुरुम के कोतुं लूना कोंगुले नी कौन खंतत के
5: लियेने दिवे ही बाहु
0: लियो
4: दिवे ही बाहु बादी क्यों आदि मादा है क्यों
0: माँ दिवे ही बाहु लिए पुने ची क्यों मिसाल का बांधी मादा हाँ तो मिफादे ची वाह का ची वेस कुदिन क्यों तो मिकुदिन मिकुता कांता तक कुरंज्यामु दिवे ही बाहा मिकुदिन वारा मोड़ो आने तो इंशाल्लाह

0: हंगार
1: अंगार दो मिंदर कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होगेरे मिंदम बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकानी दिवे ही राज्य क्या डूं
3: बाहा मोलवे वे नी बस बेनु को गें बेनु को रामिं वरु इतुर वे गें बाहा मोलवे वे नी बाहुं बाहा कदर क्या गें बस लिए

रूर उपत्यका सह तुलनीय काहेकिना कोइला लुहापथर बक्साइट क्रोम एवं मांगानीज आदि अनेक गुरुत्वपूर्ण खणी रे यहार भूतल रत्नगर्भा प्राय 370।

0: हंहार।
1: मी दिवे राज्य के अटू गयो फिर तुम्हें
2: दिवेहींगे अमिल लवंत कंग खुरी अरुहादे
3: दिवेहींगे उफेदुन तेरिकंग तक्वादे
2: दिवेहींगे माजीगे मंजरता सिफकोद्दे
3: दिवेहींगे अडु
2: दिवेहिराज्येगे अडु
3: एंहा सतरस्तेक सालिस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव
2: अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड